0: कृषि रेडियो समय संकेत।
1: अहिले हाम्रो स्टुडियोको घडीमा बिहानको ठिक 6 बजेको छ।
2: नारायण खेती गरौ है।

0: मोटु यत्रो दिन कहाँ थियो के भयो गाथ्यो नि सरले त निकालिदिनु भयो नि प्र्याक्टिसबाट
1: किन
0: रेगुलर नआएर अनि अब अब त रेगुलर
1: लाइक गर्नुहोला।

0: कृषि रेडियो समय संकेत।
1: अहिले हाम्रो स्टुडियोको घडीमा रातको ठिक 9 बजेको छ।
2: नारायण खेती गरौ है।

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: चुङ्गालाई खियो लानन कसकचिमला पाङमा सत्तैङै निर्माण सामग्री हाङसे पसिम धाती हादर लसी लिच्छा पछुताई तितोसम
2: रङ्गिन तिका गफ गुनगुनाई लस्युबा तिका दाबा मामा
1: सिङ्गोली कुनमे राङ्ला नि
2: ङाई छङमन तमगदे गोजिन्जी मामा राङसे तिलै चिन्द लस्यु आदो जट्ट दार्के इन्टरप्राइजेस सेस्यु गोदम।
3: यहाँ पञ्चकन्या जगदम्बा डन्डी एसियन पेन्ट्स ओपिसी पिपिसी सिमेन्ट पिपिआर जिआई पिभीसी स्टिल पोलिथिन पाइप तथा फिटिङ्स मार्बल प्लाइवुड सिसा पानी तान्ने घरेलु तथा कृषि पम्प किला कब्जा साथै हार्डवेयर सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्री उपलब्ध छ।
4: धारके इन्टरप्राइजेस 901 धारके बजार
3: सम्पर्क दामोदर रेग्मी 9841961353 9188776 छ। रामराजा रेग्मी 9141625

0: कृषि रेडियो समय संकेत।
1: अहिले हाम्रो स्टुडियोको घडीमा रातको ठिक 10 बजेको छ।
2: नारायण खेती गरौ है।